बीक पर कर सवारी अर पाबू जी की जान के मायने पधारया और जाइल के खींची को जल घोड़ो बी पर चढ़ परा अरण भारत के मायने खींची झगड़ो करवा गया। अब पाबू जी की कहानी